नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। अज गुरुवार है, शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने की 4 तारीख ते ईस्वी सन 2026 दे जून महीने की 25 तारीख है। इस वेले सवेर के 5:58 ते 30 सेकेंड होए ने ते साडे अज दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने।

प्रभु जी। अगर आप किसी पुस्तक से पढ़कर प्रार्थना करते हैं तो आप धार्मिक हैं, पर जब प्रार्थना आपके हृदय से निकलने लगे तो आप अति आध्यात्मिक हैं। FM बैंड 102.67 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी सुन रहे हो प्रगति संगीत दा प्रोग्राम वंदना।

भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

गुर की बाणी जिस मन वसे, दुख दर्द सब ताके नसे। जिस भी इंसान के दिमाग दे विच, मन दे विच गुरु की बाणी चल रही होगी, उन्हें किसी का भी डर, भय, दुख, दर्द नहीं हो सकता। FM बैंड 102.7 MHz से तुसी सरवण कर रहे हो भगती संगीत का प्रोग्राम वंदना।

समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अब जीवन में कुछ तो बदलना है। तो जनाब, वो की बदलना है, किवें बदलना है, वो एनालिसिस जड़ा है थानू खुद करना पेगा, क्योंकि तुसी पली भांति जानते हो कि तुसी अगर कुछ गलत कर रहे हो या फिर किसी चीज़ की मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी जी मेहनत के विच थोड़ी जी कमी है, है ना। तो वो चेंजिस, वो मेहनत नू डबल, वो बदलाव जड़ा है तुसी खुद लियाओगे अपने आप दे विच, अपनी मंजिल वल पहुंचन दे लई एक होर नवा कदम वधाउन दे लई। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮੁਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 7:09 ਅਤੇ 46 ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ।

शाम 7 बजे शुरू होएगा। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की मीटिंग च करीब 30,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टा का जायजा लिया। पंजाब आज तो वोटर सूचियां की महीना भर चलने वाली विशेष गहन सोध शुरू कर रहा है। देश में एमरजेंसी दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे राही 6 साल बाद भारत चीन सरहदी व्यापार मुड़ शुरू होने जा रहा है। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 बजे होएगा। नमस्कार।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुण तुसी सुणोगे प्रोग्राम होम स्वीट होम।

वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज। दोस्तों प्रोग्राम विच जो अगला गीत सुनोगे तुसी मौसम मूवी तो दिल ढूंढता है। इस गीत नूं गाया है भुपिंदर सिंह ते लता मंगेशकर ने, लिरिक्स ने गुलजार दे, म्यूजिक है मदन मोहन दा ते डायरेक्ट भी गुलजार ने किया है। दिल लभदा ओ पुराने दिनां दी शां, दिल लभदा ओ पुराने दिनां दी शां, जिथे यादां ही सी साडा आसमां।

लफ्जों की महफिल सजने वाली है आज फिर से यारो, कि लफ्जों की महफिल आज सजने वाली है फिर से यारो, एहसासों के रंग बिखरने वाले हैं हजारों। मोहब्बत हो, यादों का सफर हो, या दिल की कोई बात, दिल आज शायर प्रोग्राम में होगा जज्बातों से भरपूर हर एक अल्फाज के साथ।

प्रोग्राम चल रहे हैं दिल आज शायर है। सानू एक बहुत सोहनी एक शायराना अंदाज दे विच शायरी भेजी गई है, पहला तुहानू पढ़ के मैं सुनांदी हाँ। लिखते ने, सारे मुंडे माड़े नहीं होंदे, दिल दे वरके भारे नहीं होंदे, हंजू सारे खारे नहीं होंदे, एवें कह देंदे ने लोग अक्सर, सारे मुंडे माड़े नहीं होंदे, दिलां च ओह भी चा रखदे ने पर अक्सर ही गवा रखदे ने, हुंदे निकम्मे जां मेहनती, मुंडे जनाब विचारे नहीं हुंदे।

अगे लिखा है, हर रात जानबूझकर खुला छोड़ देता हूँ दरवाज़ा, कि हर रात जानबूझकर खुला छोड़ देता हूँ दरवाज़ा, शायद तुम मेरे इंतज़ार का सबब समझो। इंतज़ार करना वैसे किसी चीज़ दा, किसी गल दा, किसी वादे दा, किसी परसन दा बहुत औखा है। ये उही बंदा समझ सकता है जिसने किसी दा इंतज़ार किया होए, जा कोई इंतज़ार कर रहा होए।

0: स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए

0: खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
0: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
0: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
0: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ, बताइए।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
4: जी,

0: इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का,

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक

0: डिलीवरी ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
4: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
5: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
6: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आपका समय शुरू हो गया। समय मैं इसलिए कह रही हूं कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम शुरू हो गया है। जी हां, शुरू हो गया है रेडियो डॉक्टर, जिसको प्रतिदिन आप सुनते हैं एफएम रेनबो 102.6 पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच, और एक खास डॉक्टर एक खास विषय के साथ हमारे साथ होता है, आपकी समस्याएं सुनता है, उसका समाधान करता है। आज भी हम यही करेंगे। आज का विषय जान लीजिए। आज का विषय है विटिलिगो। जी हाँ, विटिलिगो भी बोला जाता है और विटिलाइगो भी बोला जाता है। ये हम डॉक्टर साहब से भी कंफर्म कर चुके हैं। तो विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये है हमारा आज का विषय। और इस विषय पर बहुत सारी ढेर सारी जानकारी समेत हमारे साथ हमारे सामने बैठी हुई है डॉक्टर अनन्या शर्मा। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अनन्या, बहुत बहुत स्वागत है एफएम के स्टूडियो में आपका।
2: थैंक यू मैम।
1: आपने विषय सुन लिया है विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए विटिलाइगो, जैसे हमारे श्रोता हैं इसको नहीं जानते हैं, किस तरह की समस्या होती है ये?
2: विटिलाइगो एक हमारी चमड़ी की बीमारी मानते हैं, जिसमें हमारे चमड़ी में जो रंग बनाने वाले सेल होते हैं, मेलानोसाइट जिनको बोलते हैं, तो उनकी संख्या कम हो जाती है। तो ये संख्या कम या तो उसमें कुछ खराबी होने से होती है, और इसे ऑटो इम्यून भी माना जाता है, जिसका मतलब कि हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ गलती से इस मेलानोसाइट जो रंग बनाने वाले हमारे चमड़ी में कण है उस पे अटैक सा करके उनको कम कर देता है। इस वजह से जो हमारी स्किन की जो नॉर्मल कलर है उसकी जगह वाइट पैच बन जाते हैं। तो ये सफेद दाग की बीमारी है, उसे विटिलाइगो कहते हैं।
1: तो आपने समझ लिया कि विटिलाइगो किस तरह की बीमारी है। इस तरह की जो सफेद पैचेस आपकी स्किन पर या कहीं भी बन सकते हैं, क्या डॉक्टर साहब ये शरीर के किसी भाग में भी होते हैं कि किसी पर्टिकुलर भाग में बनते हैं?
2: स्किन के तो किसी भी हिस्से पे बन सकते हैं। कुछ कुछ जगहें होती है जहां ज्यादा बनने की संभावना होती है, जैसे हमारे हाथ पैर और जो दूर वाले हिस्से हैं या जहां पे रगड़ ज्यादा लगती है वहां पे ज्यादा बनती है, बट पूरे स्किन में कहीं भी बन सकते हैं।

जी, तो हम आज एक घंटा बात करेंगे डॉक्टर अनन्या शर्मा से कि विटिलाइगो और इससे जो संबंधित प्रॉब्लम्स है उससे कैसे जूझा जाए, और हमारे जो श्रोता है जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हर दिन जुड़ते हैं, अपनी समस्या अगर आपको रिलेटेड लगती है या आपके मन में कोई जिज्ञासा हो रही है कि किस तरह की बीमारी है, कैसे इसका निदान होता है और कैसे उपचार होता है, या आपको लगता है कि आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसे आप सुनते हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी। तो इस कार्यक्रम को यूं ही सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर में आज हम विटिलाइगो पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अनन्या शर्मा, आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये किसी भी भाग में हो सकता है, स्किन के किसी भी पोर्शन में हो सकता है, लेकिन जैसे हम गीत सुन रहे थे, लोग बहुत ज्यादा फेस पे इम्पोर्टेंस देते हैं, चेहरे के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर ये इस तरह के दाग धब्बे या कोई पैच होता है चेहरे पर, तो बहुत फर्क पड़ता है उसको मेंटली भी उस पर्सन को, और आसपास के लोग भी उसको उस तरह का एहसास कराते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे, पर हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है, पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी,
1: रेडियो डॉक्टर की एंकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर शाली मैम को जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी।
1: और डॉक्टर अनन्या शर्मा मैम को भी नमस्कार।
2: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही। उम्र मेरी 48 वर्ष है। सवाल मेरा ये है मैम, वैसे तो मैं व्हाइट स्किन का ही मालिक हूँ, जैसे फाउंडर अंग्रेज होते हैं ना, वैसे ही हूँ मैं। तो अब मैं जानना ये चाहूंगा कि ये जो व्हाइट लीगो, जो आपने प्रॉब्लम कही व्हाइट लीगो, अब मैं जानना ही चाहता हूँ, वैसे तो ये बीमारी मुझे तो है नहीं, पर अगर ये हो जाए या हो जाती है किसी को, तो इससे नफा, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, पहले तो ये बताएं। और अगर हो, दूसरा सवाल ये है कि कुछ घरेलू ट्रीटमेंट मुमकिन है या फिर हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा डॉक्टर के पास?
2: जी, आपका पहला सवाल था कि अगर ये हो जाता है किसी को तो इसके क्या फायदे और नुकसान है। तो ये एक बीमारी मानी तो जाती है, पर इंसान से ज्यादा ये एक सामाजिक बीमारी है, क्योंकि इसका, जब ये हमारी चमड़ी में होता है, इसका सिर्फ चमड़ी का रंग बदलता है और इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एक इंसान की सेहत।

0: को, उसके अंदरूनी सारे जितने सिस्टम है सब कुछ एकदम ठीक चलता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये एक देखने की, एक चमड़ी के रंग की बीमारी है। तो इसका नुकसान बाकी शरीर में कुछ नहीं है, नुकसान ये है कि समाज में इसको, हमारे समाज में भी स्पेशली इंडिया में इसको थोड़ा बुरा माना जाता है, इससे थोड़ा भेद बदलाव किया जाता है। इसकी वजह से ये है कि कई बार लोगों को काफी इसमें नुकसान पहुंचता है, नॉर्मल लाइफ में उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कभी शादी में इशू होता है, तो ये सब इसके नुकसान है। पर असल में देखें तो इसका कोई वो नहीं है शरीर पे। और फायदे का तो अभी तो भारत में ऐसा है कि सबको गोरा होना है वैसे तो, पर किसी तरह इस बीमारी को, तो ये सफेद की ही बीमारी है, फिर भी इसे बुरा मानते हैं, इतना ही है। और
1: ट्रीटमेंट पे भी चाह रहे थे कुछ
0: जी,
1: जानकारी।
0: आपने दूसरा सवाल पूछा कि ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट का ऐसा है कि इसमें कई सारे ट्रीटमेंट, हमें इसमें पहले देखना पड़ता है कि कितना हिस्सा शरीर का इससे प्रभावित है और ये बढ़ रही है कि रुकी हुई है, उसके हिसाब से इसका अलग अलग इलाज होता है। कि अगर बढ़ रही है तो हमें ऐसी दवाइयां देना पड़ती हैं पहले जिससे इसका बढ़ना बंद हो जाए, और फिर रंग लाने के लिए लोशन होते हैं, कुछ लाइट थेरेपी भी होती है। और जैसे आपने सर्जरी का मेंशन किया, तो सर्जरी एक अच्छा इलाज है पर वो कुछ ही मरीजों में की जा सकती है, उसके लिए आपकी बीमारी रुकी होनी चाहिए। कभी कभी एक हिस्से पे सीमित बीमारी होती है जिसे सेगमेंटल विटलाइगो कहते हैं, उसमें सर्जरी का असर बहुत अच्छा आता है और लोशन वगैरह का उतना नहीं आता अच्छा उसमें। तो फिर कहने को ये है कि इस बीमारी के कई सारे रूप हैं और इसलिए जरूरी है कि ये आप स्किन के डॉक्टर को अगर दिखाएं तो वो आपको बेस्ट आपका बता पाएंगे कि आपकी बीमारी के रूप में क्या चीज काम करेगी। और कई सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं तो कई चीजों में काम किया जा सकता है, और ये भी बता पाएंगे कि कभी कभी कोई एरियाज ऐसे होते हैं, एकदम उंगली के जो कोने होते हैं जहां पे आसानी से रंग नहीं आता, तो वो भी आपको बता पाएंगे कि आप इसमें कितना पैसा, कितना कोशिश इस पे खर्च करें ना करें, तो एक बार सलाह लेना सही रहेगा इसमें।
1: जी, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से आपने बताया है। उम्मीद है कि इनको सही तरह से मार्गदर्शन मिल गया आपकी तरफ से। और जो आप कह रहे हैं कि घर बैठे ही हम कुछ लगा लें, तो डॉक्टर साहब कह रहे नहीं, एक बार आप दिखाएं किसी को, जाकर स्पेशलिस्ट को। एक श्रोता और फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार। हम
1: जी जी नमस्कार जी।
2: मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी, मेरठ से।
1: जी जी गौतम
2: मेरा
1: साहब, आपका
2: सवाल
1: प्रश्न
2: है
1: करें।
2: कि जैसे होम्योपैथी में कहते हैं कि लीवर डिसऑर्डर माना जाता है, लीवर कमजोर होने से, क्या ये सच्चाई है या मिथक है?
0: जहां तक कि हमारे एलोपैथिक उसमें है, तो इसका लिवर की बीमारी से तो कोई रिलेशन नहीं माना जाता, इसका केवल चमड़ी से ही रिलेशन है, क्योंकि जो कण रंग बनाते हैं हमारी चमड़ी के, वो चमड़ी में ही होते हैं और उसी पे असर पड़ता है। तो इसमें लिवर की बीमारी से कोई रिलेशन नहीं है आमतौर पर।
1: हाँ, हमारे पास बहुत सारे मैसेज भी आ गए हैं डॉक्टर अनन्या। हमें रजत लिख रहे हैं कि वी सी मैनी व्हाइट पिगमेंट ओवर फेस इन किड्स, डज इट कन्वर्ट टू विटिलाइगो?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसे मरीज हमारे पास कई सारे आते हैं, कई माँ बाप आते हैं जिनको चिंता होती है कि उनके बच्चों के चेहरे पे हल्के हल्के सफेद स्पॉट आते हैं, और ये ज्यादातर ये सिर्फ एक सूखापन या फिर एक एक्जिमा का बहुत हल्का सा रूप होता है, जो कि सूखी चमड़ी जिन बच्चों की होती है उनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है।
1: ड्राइनेस के कारण ही
0: एक,
1: होता है बस
0: हाँ
1: ये।
0: जी, वो बस एक ड्राइनेस के कारण है, और वो एक जगह पे होके वहां से जाके दूसरी जगह आ जाता है, तो वो विटलाइगो नहीं है, और इसी चिंता से लोग आते हैं। तो इसलिए जैसे हमारे पहले फोन कॉल ने भी पूछा, तो मैं फिर से यही कहूंगी कि ये सही रहेगा, जब आपको डाउट है तो आप पहले सलाह ले लें उसको विटलाइगो मानने से पहले और उसका इलाज करने से पहले।
1: जी बिल्कुल सही। और फरीद मंडल हमें लिख रहे हैं दिल्ली से कि क्या ऐसा भी होता है कि कुछ खान पान से ये हो जाए, जैसे इन्होंने लिखा एग्जाम्पल के लिए कि फिश और मिल्क दोनों साथ में लिए जाएं, इस तरह की बहुत सारी मैं तो कहूंगी मिथ्स भी हैं और कुछ हो सकता है सच्चाई भी हो, हम कह नहीं सकते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी कहे जाते हैं जो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो क्या इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर लिया जाए फिश विद मिल्क, तो इस तरह का विटिलाइगो होने की समस्या हो सकती
0: जी,
1: है क्या?
0: ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो मानी जाती है इंडियन उसमें मेडिकल लाइंस में, बट ये साइंस के हिसाब से जहां तक है तो ऐसे किसी कॉम्बिनेशन से कुछ ट्रिगर नहीं होता है। और जिनको विटलाइगो है भी, उनके भी दूध लेने से या कोई सफेद पदार्थ लेने से, कभी कभी लोग को मना किया जाता है खट्टा ना ले, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बीमारी पे। तो इस चीज पे कई रिसर्च भी हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत माना जाता है, पर इस पे रिसर्च भी, स्टडी भी हुई हुई है, और ये पता है अब हमें कि इन सब चीजों को खाने ना खाने से बीमारी पे फर्क नहीं पड़ता। और जबकि छोटे बच्चों को कभी हो जाता है और उनको दूध वगैरह मना कर देते हैं।

0: उनसे उनकी और सेहत पे फर्क पड़ सकता है, पर सफेद दाग की बीमारी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: कि खाने पीने से इस पे कोई असर नहीं होता है कि कोई ये कहे कि मैंने ये खा लिया या मैं ये मेरा डेली रूटीन में मैं ये खाती हूँ तो उसके कारण हो सकता है।
0: हाँ,
1: ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है।
1: ऐसे ही मिलता जुलता एक और प्रश्न है, ये है कोलेश्वर ठाकुर जी का, ग्राम बारियातू जिला लातेहार झारखंड से लिख रहे हैं। सफेद दाग की समस्या क्या जेनेटिक होती है, एक तो ये जानना चाह है इन्होंने, और साथ ही अगर होता है तो क्या खान पान से होता है, इसका निदान कैसे किया जाए। तो थोड़ा तो आपने बता खान पान से नहीं होता, पर सफेद दाग की समस्या क्या जेनेटिक हो सकती है?
0: तो जेनेटिक का एक, जैसे ये जो बीमारी है इसके कई वजहों से होती है, इसे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं कि बहुत सारी चीजों से है, तो उसमें जेनेटिक का थोड़ा तो रोल है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। तो जैसे मानिए आपकी आम जनता में 100 में से एक इंसान को होता है सफेद दाग की बीमारी। अब अगर हमारे परिवार में किसी को है सफेद दाग की बीमारी, इमीडिएट परिवार में हमारे माता पिता को या भाई बहन को, तो हमारे 100 में से 6 चांस हो गया कि ये बीमारी होने का, तो हल्का बढ़ गया। पर ये भी नजर रखना है कि अभी भी 100 में से 94 में नहीं है बीमारी, तो हल्का सा फर्क पड़ता है जेनेटिक से, थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, पर और बहुत सारी चीजें हैं। कई शरीर के कण ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, बेवजह होते हैं, उनका नहीं बता सकते क्यों हुआ। कुछ कहते हैं कि बाहर इन्वायरमेंट से कुछ कुछ क्या कहते हैं, कोई स्ट्रेसर्स होते हैं उनकी वजह से ऐसा शुरू होता है ये साइकिल, बट पूरा मिला के ये बहुत सारी चीजों से मिलके ये बीमारी बनती है। सिर्फ जेनेटिक भी नहीं है, और पर जेनेटिक का थोड़ा बहुत रोल तो है।
1: जैसे आपने बताया कि बहुत सारी स्किन की और भी समस्या हो सकती है जो कुछ मिलती जुलती लगती है, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप बताते हैं कि नहीं ये विटिलाइगो नहीं है, कुछ और है, तो क्या इस तरह से जो और जो बीमारियां होती हैं उनका भी क्या, जैसे मान लीजिए किसी को स्किन की कोई और बीमारी है, एक्जिमा है या ड्राई स्पॉट्स है, व्हाटएवर, तो उनको विटिलाइगो होने की समस्या हो सकती है, बढ़ सकते हैं चांसेस क्या उससे?
0: उनसे दूसरी स्किन की बीमारियां मोस्टली इससे रिलेटेड नहीं होती। एक दो बीमारियां जो ऑटो इम्यून जिनको माना जाता है उनका थोड़ा बहुत संबंध बताया जाता है, एलोपेशिया एरियाटा का ऐसे बताया जाता है, बट ये एक्जिमा सोरायसिस वगैरह जनरली इनका मतलब अब होने को तो साथ में हो सकता है, वो तो थोड़ा चांस की बात है, पर उससे बहुत ज्यादा इसका रिस्क तो नहीं बढ़ता।
1: हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: जी, जी आप है रेडियो डॉक्टर में।
2: मैडम जी नमस्ते।
1: जी जी नमस्कार
2: मैडम जी, मेरा ये सवाल था, मैं ये कह रहा था मैडम जी, फिश के ऊपर जैसे बताते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये बात कितनी हद तक सही है कितनी है?
1: अभी डॉक्टर साहब ने यही बताया, आप सुन नहीं रहे थे प्रोग्राम, डॉक्टर साहब ने अभी बताया।
2: फोन मिलाने के चक्कर में
1: फोन मिलाने के चक्कर में हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया है कि खान पान से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको कोई और प्रश्न भी है?
2: घर वाले डरा देते हैं कि अभी फिश खाइए या दूध मत पीना।
0: नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, इस पे तो स्टडी वगैरह भी हो रखी है, खान पान में कोई आपको टेंशन की बात नहीं है इस बीमारी में।
1: जी
2: ठीक है मैडम।
1: मृत्युंजय कुमार चेरकी गया बिहार से हमें लिख रहे मैसेज कि मैम और डॉक्टर साहिबा को नमस्ते, सफेद दाग का स्थायी इलाज है या नहीं, ये इनका प्रश्न है कि इसको ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं। मेरे पड़ोस में एक आंटी को पुराना सफेद दाग है जो इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या सफेद दाग वंशानुगत बीमारी है, क्या ये नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रभावित कर सकती है, तो ये बताइए।
0: तो इसका इलाज तो है, पर जैसा मैंने बताया इसके कई सारे रूप है, उनके अलग अलग टाइप के इलाज है, दवाई, लोशन, लाइट थेरेपी, सर्जरी, इन सब के सारे ऑप्शन हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ टाइप के होते हैं जिनमें बहुत अच्छा इलाज काम नहीं करता, उनको भी कभी कभी जैसे हम उनके लिए छुपाने की क्रीम्स भी होती हैं। तो देखिए सिर्फ देखने की बीमारी है, और अगर हम इसको छुपा पाए तो बात अंत में सेम ही आएगी, जो दिखेगा नहीं। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई तरकीब है कि 100% बीमारी खत्म हो जाए और कभी ना वापस आए, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली कोई कोई होते हैं जो एक ही जगह सीमित सेगमेंटल विटिलाइगो कहते हैं, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर जाते हैं, वापस नहीं भी आते, बट ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी करता है। तो इसको जब आप सलाह लेंगे तभी आपको और किस टाइप की बीमारी है वो हम तभी विस्तार में ज्यादा बता पाएंगे।
1: हमें ये लिखा है, एक मैसेज और आया है, उन्होंने लिखा है कि ये क्या छूने से भी फैलती है, ये जानना चाह रहे हैं।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है हमारे समाज में, और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये बीमारी छूने से बिल्कुल नहीं फैलती। पिछले श्रोता ने ये भी पूछा था कि जेनेटिक है, उसका हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा इंक्रीज रिस्क है, छूने से, साथ रहने से, बात करने से इससे बिल्कुल नहीं फैलती। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आपके साथ वालों को विटिलाइगो है

0: आप उनके साथ काम करते हैं, रहते हैं, सेम घर में हैं, दोस्त हैं आपके, कैसे भी हैं, उससे आपको होने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है
1: जी। तो आज आप रेडियो डॉक्टर में सुन रहे हैं डॉक्टर अनन्या शर्मा को, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ है एम्स न्यू दिल्ली में, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हैं, हमारे भी अपने प्रश्न हैं और श्रोताओं के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब, और फिर आते हैं, एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आज हम बात कर रहे हैं विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। और हमारी आज की रेडियो डॉक्टर हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनन्या शर्मा। तो डॉक्टर साहब, मैसेज एक आया है, लिखने वाले हैं मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है, विटिलाइगो बीमारी के बारे में आज बेहद कीमती अनमोल जानकारी हमें रेडियो डॉक्टर के माध्यम से मिल रही है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरा सवाल है कि क्या किसी खास उम्र में ये कमजोरी से ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है? जलने के बाद जो सफेद दाग जगह जगह पर हो जाते हैं, तो क्या ये भी इसी बीमारी के तहत आते हैं और क्या ये बीमारी गंभीर है? ये इनके प्रश्न हैं।
2: जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। और उम्र के हिसाब से वैसे तो ये किसी भी उम्र पे हो सकती है, पर ज्यादातर थोड़ा यंग उम्र में होती है। 20-30 साल वाले लोगों को ज्यादा उत्पन्न होती है और ज्यादा बूढ़े या ज्यादा छोटे बच्चों को कम होती है ये, पर किसी भी उम्र में हो सकती है। इनका दूसरा सवाल था कि जो जलने के बाद आपके सफेद दाग रहते हैं। जी, ये अच्छा सवाल है क्योंकि वो दिखने में बहुत एकदम सेम ही लगते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल सफेद दाग बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी जो

0: हमने बताया कि जो मेलानोसाइट जो हमारे स्किन में रंग बनाने वाले सेल है वो नष्ट हो जाते हैं जब जला होता है स्किन, तो वो नष्ट हो जाते हैं। पर फर्क ये है कि दिखता ये सेम है, पर ये वो बीमारी क्योंकि अंदरूनी ऑटो इम्यून नहीं है तो ये और जगहों पे फैलता नहीं, ये जहां जला है ये बस वहीं तक सीमित रहेगा। और इसमें ट्रीटमेंट का थोड़ा कम असर आएगा और इस पे ज्यादातर सर्जरी से भी इसमें रंग लाया जा सकता है जो जलने के बाद वाले एरिया होते हैं। और गंभीरता के हिसाब से गंभीर, जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ देखने की बीमारी है, ये उतनी ही गंभीर है जितना हम इसको माने कि गंभीर है, और कोई असर ये नहीं करेगा आपके शरीर पे।
1: हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैडम को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: जी चड्ढा जी, अपने प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: नमस्ते जी
2: डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल हैं।
0: जी,
2: पहला ये कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये सफेद दाग की प्रॉब्लम हो जाए
0: जी,
2: तो होने वाले बच्चे को भी ये इफेक्ट करेगी। नंबर टू, हमको अपनी डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए जिससे दाग हो ही ना, कृपया बताने का कष्ट करें।
0: जी, तो जो आपने प्रेगनेंसी वाला सवाल पूछा, तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के वक्त पे हो तो कुछ अलग स्पेशल होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो इसकी अनुवांशिक बीमारी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है कि 100 में 1 के होने के बजाय 100 में 6 का चांस रहेगा बीमारी फैलने का बच्चे को, तो हल्का सा बढ़ जाएगा रिस्क आम जनता के हिसाब से। पर फिर भी आप मानो 90 से ज्यादा लोगों में आउट ऑफ 100 में से नहीं होगी वो बीमारी फिर भी, ठीक है। और दूसरी चीज आपने पूछा कि खाने का आप क्या कर सकते हैं, तो खाने का मैं फिर से बताना चाहूंगी कि खाने का इसमें कोई परहेज नहीं है, इसको ना होए उसके लिए भी नहीं है, और जिसको हो गया है उसको कुछ बीमारी का कम ज्यादा होना नहीं होगा खाने से, तो खाने का इसमें बिल्कुल परहेज नहीं है। इसमें कई स्टडी काफी काम कर चुके हैं लोग, खाने का इसको हम वहम मानते हैं कि इसमें कोई सफेद खट्टा ये सब नहीं खाने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा
1: जी। और यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अनन्या शर्मा की खास तौर पर रिसर्च है विटिलाइगो पर, और इसीलिए आज वो काफी इस बारे में बता रही हैं कि रिसर्च बहुत हो चुकी है और उन्होंने भी इस विषय पर काफी रिसर्च की है, तो इस रिसर्च के बारे में कुछ खास आप बताना चाहेंगी जो आपने की है।
0: जी, मेरा जो एक थीसिस वाला रिसर्च था वो ये था कि हम इस विटिलाइगो को, सफेद दाग की बीमारियों को भारत की जनता में और होने वाले जो हल्के रंग के पैच होते हैं स्किन के, उससे कैसे अलग माने, अलग कैसे करें कि कौन सा ये वाली विटिलाइगो बीमारी है और कौन सी बाकी बीमारियां हैं, क्योंकि हमारी स्किन में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हल्के दाग की तरह दिखती है, तो वो जैसे बताया जो सूखे पैच होते हैं, माइल्ड एक्जिमा वाले होते हैं, कुछ जन्म के दाग भी होते हैं जो सफेद रंग के होते हैं, और उसके अलावा कोई कोई माइल्ड फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो ऐसे सफेद लग सकते हैं, और एक होते हैं जो ये बहुत कॉमन है कि ऐसे बूढ़े लोगों की स्किन में धीरे धीरे व्हाइट छोटे छोटे स्पॉट्स आने लग जाते हैं जो सिर्फ स्किन की एज के साथ आते हैं और वो फैलते नहीं और बड़े नहीं होते, तो वो भी उसको कुछ IGH करके माना जाता है, और उसको लेके कई मरीज आते हैं कि ये देखिए सफेद दाग हो गया है पर वो फैलता नहीं है। तो इन सबको अंतर करने के लिए, क्योंकि विटिलाइगो नाम से सबको डर लगता है, सबको टेंशन होती है, तो उसके लिए एक माध्यम होता है डर्मोस्कोप अब जो आया है स्किन वाले पढ़ाई में, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं उसे, तो उसी चीज पे रिसर्च था। और इसलिए मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको लगे भी कि कोई सफेद पैच आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, स्किन के डॉक्टर के पास, तो वो आपको बता पाएंगे कि हो सकता है वो सफेद पैच हो ही ना।
1: और वैसे भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो रेडियो डॉक्टर के माध्यम से डॉक्टर साहब, हम प्रतिदिन अपने श्रोताओं को यही कहते हैं कि हमें किसी भी बीमारी से डरना नहीं है, किसी भी बीमारी को अगर आपको हराना है तो सबसे पहले तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करके आपको उसको समझने के लिए अपनी जो एक डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा और उससे ठीक से समझना होगा कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। और यही मंच प्रदान करता है हमारा ये कार्यक्रम कि यहां पर हम एक अवेयरनेस फैलाते हैं, उस बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके सिम्टम्स को, उसके ट्रीटमेंट का क्या मॉड्यूल रहता है, वो सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे एक श्रोता और जुड़े हैं फोन लाइन पर, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार,
3: मैम को भी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते जी।
3: मैं ये जानना चाह रहा था, किसी महिला को सफेद दाग हैं और वो अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराती हैं, क्या उससे उसको होने का खतरा बना रहता
0: है? नहीं जी, आप स्तनपान करा सकते हैं, उससे खतरा नहीं बढ़ता है
1: जी। तो आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज की हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर अनन्या शर्मा। हमारे पास मैसेज आया है, लिखने वाली हैं परिधि दिल्ली से, और ये लिख रही हैं कि आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट आई लव दिस प्रोग्राम एंड बेनिफिट फ्रॉम इट एवरी डे।

0: थैंक यू सो मच. और ये लिख रही है कि मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ. आई हैव ड्राई स्किन एंड इज वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट. मेरे व्हाइट स्पॉट्स हैं फेस पर एंड विच हैज बीन डायग्नोस्ड एज स्किन एक्जिमा. बट सिंस द व्हाइट स्पॉट्स डोंट गो, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी अर्ली स्टेज ऑफ विटिलाइगो? आपने बताया बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो शायद ये कारण हो सकता है स्किन एक्जिमा. तो ये सिर्फ ये जानना चाहती है कि अगर मैं इसको कुछ ना करूं या इसका कोई इलाज ना कराऊं तो ये कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो सकता?
1: ऐसे कन्वर्ट तो नहीं होता है, पर अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि विटिलाइगो, अगर आप एक स्किन डॉक्टर को दिखा चुके हैं और उन्होंने आपको ये बताया है और अगर आपका बिल्कुल एकदम दूध जैसा सफेद पैच नहीं है तो कम चांस है कि वो विटिलाइगो जैसा हो. और आप अगर पूरा जो ट्रीटमेंट आपको दिया होगा उसको फॉलो करें और धूप से, फिर अगर आपको लगता है धूप से बढ़ रहे हैं ये रिएक्शन तो उससे धूप से बचाव करके देखें. अगर उससे कम हो रहा है तो फिर लाइकली वो विटिलाइगो नहीं है. बाकी जब भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं, वो डर्मोस्कोप से देख सकते हैं और करीबी से देख सकते हैं.

0: होगा उसको फॉलो करें, और धूप से फिर अगर आपको लगता है धूप से बढ़ रहे हैं ये रिएक्शन, तो उससे धूप से बचाव करके देखें, अगर उससे कम हो रहा है तो फिर लाइकली वो विटलाइगो नहीं है। बाकी जब भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं, वो डर्मोस्कोप से देख सकते हैं और करीबी से देख सकते हैं। और एक ही डॉक्टर के पास जब हम एक बार के बाद बार बार जाते हैं तो अगर कोई डाउट होता है तो वो डॉक्टर ज्यादा समझ पाता है, क्योंकि उन्होंने आपको बार बार देखा होता है। अगर आप डॉक्टर बदल बदल के जाएंगे तो कम चांस है कि आपका सही डायग्नोसिस मिलेगा। आप उन्हीं के पास वापस जाइए और चांस है कि वो आपको और बता पाए इस बारे में।
1: जी, तो एक तो आपने कहा कि बिल्कुल वाइट अगर वो नहीं है तो फिर
0: जी
1: वो कुछ और हो सकता है, जैसे इनको इनके केस में स्किन एक्जिमा है
0: जी
1: तो उस तरह से उसको थोड़ा पहचाना जा सकता है। पर एक चीज बहुत अच्छी आपने डॉक्टर साहब बोली कि हमें जो भी इलाज लेना है, जिस डॉक्टर के पास जाना है, तो उसको परस्यू करना चाहिए। ये नहीं
0: जी
1: कि पहली बार में फायदा नहीं हुआ तो आपने फिर दूसरे के पास चले गए, फिर तीसरे के पास चले गए,
0: जी
1: तो कहीं से कुछ डिसकंटिन्यूटी होती होगी और
0: जी
1: शायद इलाज
0: ये बहुत
1: उतना।
0: कॉमनली होता है, क्योंकि
1: जी
0: हम इलाज भी हम सबसे सेफ जो फायदेमंद हो उससे शुरू करते हैं। बट उसका जब भी एक डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसमें होता है कि अब वो सोच के रखा होता है कि अगर ये नहीं काम किया, ये पूरा
1: अच्छा।
0: आराम नहीं हुआ, तो हम एक और बढ़ा करके और ऑप्शन होते हैं, तो आप उनके पास जाते रहेंगे तो वो आपको और आगे बता पाएंगे।
1: हमें ये लिखकर भेजा है हमारे श्रोता ने कि हाउ टू ओवरकम द एम्बेरसमेंट इन पब्लिक विद द स्किन कंडीशन। मैं एक्चुअली आखिर में इस बात को लेना चाह रही थी कि बहुत
0: जी
1: स्टिग्मा है, आपने
0: जी
1: इस बात को उठाया भी था कि लोग जो है काफी आपके पास भी आते हैं और इस चीज से काफी वो परेशान भी रहते
0: जी
1: हैं कि उनको दूसरे लोग शायद ज्यादा ये पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारे चेहरे में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे हाथ पे ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे श्रोता ने लिखा है तो मैं सोच रही थी कि इसको आप बता दें, बाद में हम फिर से एक बार अगर समय मिलेगा तो हम
0: जी
1: लेंगे इसको।
0: जरूर।
1: जी
0: तो इसमें दो तीन कंपोनेंट हो गए कि एक तो चीज हो गई कि वो निशान दिखे ना, ठीक है, उसके लिए आप इलाज भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है टाइम के लिए, जैसे जो हमारे बाहर वाले जैसे चेहरा या हाथ पे है, तो कई सारी क्रीम्स भी आती हैं जो फाउंडेशन जैसी माना जाए उस टाइप की क्रीम्स आती हैं जो थोड़ी सी वाटर रेजिस्टेंट भी होती है, उनको लगा के उस निशान को छुपाया भी जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल स्किन से मैच हो जाता है कलर और पता नहीं चलता कि अंदर सफेद दाग है। तो एक तो उसको छुपाया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, और उसके बाद सेकेंड चीज इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका परसेप्शन है ऑफ बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विटलाइगो क्लिनिक्स भी होती हैं, उसमें कई टाइप के मरीज आते हैं। कुछ मरीज होते हैं जो एक छोटे से दाग के लिए जो छुपा हुआ होता है उसके लिए भी उनकी काफी जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि वो उसमें बहुत टेंशन लेके रहते हैं। और कुछ लोग इतना एडजस्ट हो जाते हैं कि उनको बाकी बिल्कुल जिंदगी बढ़िया चलती है उनकी, और वो मान लेते हैं कि ये एक हल्का सा पैच है बस। तो आपको खुद का एडजस्टमेंट भी करना जरूरी है, जैसे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस होता है उसी को मानेंगे ये एक स्ट्रेस है, तो मेडिटेशन करना, अपने आप को काम रखना, इस चीज को समझना, ये सब भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ज्यादा मानसिक तनाव रहता है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प, साइकैट्रिस्ट की हेल्प भी ली जाती है इससे एडजस्ट करने के लिए, जो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। सबको कभी कभी मदद की जरूरत होती है और ये हेल्प ली जा सकती है इस बीमारी से एडजस्ट करने के लिए। एडजस्ट करना इम्पोर्टेंट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि स्ट्रेस करने से भी स्ट्रेस का भी रोल है हल्का इस बीमारी में, कि उस बीमारी को बढ़ाने में। तो ये दो तरफा रोल हो गया कि हम स्ट्रेस कम करेंगे तो शायद हमारी बीमारी भी कम बढ़ेगी। तो ये तो जरूरी है अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने आप को स्ट्रांग करना। और तीसरा है जो हम लोगों का रोल है जो हम और करेंगे, कि बाकी जनता को ये नॉलेजेबल बनाना कि इस बीमारी से ना तो ये फैलता है ना ये कोई ऐसी चीज है जिससे आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए कि मतलब कि कुछ अलग है या आपको ऐसे देखा जाना चाहिए। तो वो है सामाजिक अवेयरनेस, कि सबको पता रहे कि ये इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं जिससे हम ये एम्बैरेसमेंट को कम कर सकते हैं। आप पहले दो कर सकते हैं और हम तीसरा करने की कोशिश जारी
1: जी जी
0: रखेंगे।
1: बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने यहाँ बोली कि आपको कोई भी एम्बेरसमेंट की पहले खुद को आप पहले ये समझें कि आप किसी से भी कम नहीं है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार कर रखें, अपने सेल्फ स्टीम को बचा कर रखें, और फिर देखें आप कुछ भी करते हैं तो लोग आप कोशिश करते हैं कि आपको कंफर्टेबल आप ना हो, तो इसीलिए आप पहले अपनी स्किन में कंफर्टेबल होंगे तो फिर आप बेहतर इसको डील कर सकेंगे डॉक्टर साहब।
0: हाँ जी, और स्किन के डॉक्टर होने से मैं कहना चाहूंगी कि किसी के भी स्किन साफ नहीं होती, जितना आप देखते हैं वीडियोस वगैरह सब कुछ एडिटेड होता है, किसी की स्किन साफ नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई निशान, कोई तिल, कोई दाग जरूर होता है, और ये सब एक नॉर्मल चीज है।
1: और डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया, खासतौर पे जब हम मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं या कहीं मॉडलिंग किसी को मॉडल देखते हैं, तो हमें लगता है कि वाह इनका तो कितना अच्छा स्किन है और सारे

0: जैसे फिल्म स्टार्स हैं तो उनको बहुत अच्छे स्किन है, तो आपने बता दिया कि ऐसा नहीं है, सिर्फ वो कई चीजें दिखती हैं और वो एक्चुअली नहीं होती हैं। तो हमें एक ये मैसेज भेजा है, श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से, 74 इयर्स ओल्ड हैं। इन्होंने लिखा है कि इज ब्लैक पैचेस आल्सो सिमिलर टू विटिलाइगो, ब्लैक पैचेस। इन्होंने लिखा है वन ऑफ माय रिलेटिव्स हैव टू चिल्ड्रन और उनके दोनों बच्चों को पैचेस हैं, एक को सफेद पैच है, एक को ब्लैक पैच है। द लैटर वन या दूसरे बच्चे को जिसको ब्लैक पैच है उसके हेड हेयर के बीच में भी पैच है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो क्या ब्लैक पैचेस भी कुछ होते
1: हैं? पैच का मतलब बस ये हुआ कि एक हमारी नॉर्मल स्किन से एक डार्कर स्किन मतलब कहीं पे है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, तो वो तो देख के ही पता चलेगा। तिल भी हो सकता है वो और कोई स्किन की बीमारी हो सकती है।
0: जी
1: वही वो तिल, हाँ, बर्थ मार्क हो सकते हैं, मोल हो सकते हैं या कोई और निशान हो सकता है।
0: तो आप आज सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर में विटिलाइगो और रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बता रही हैं विस्तार से डॉक्टर अनन्या शर्मा। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं एम्स न्यू दिल्ली में, और इसी तरह से कार्यक्रम से जुड़े रहिए, अपने प्रश्न भेजते रहिए। इस ब्रेक के बाद हम फिर से और बहुत सारे प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछेंगे और इस समस्या को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ।

0: वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर, और हमारी आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर अनन्या शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं मैसेज के माध्यम से भी, पर हमारे एक श्रोता अभी जुड़े थे फोन लाइन पर। उन्होंने ये जानना चाहा था कि उनको पैर की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो एक तो ये कि क्या ये भी एक विटिलाइगो का सिम्टम है या बन सकता है, और उनको जैसे उन्होंने बताया कि चेस्ट पे उनके काफी छोटे छोटे तिल हैं, तो ये भी कहीं इशारा करते हैं विटिलाइगो का?
1: जी, इन दोनों चीजों का विटिलाइगो से तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये उंगलियों के बीच में फंगस का इन्फेक्शन बता रहे हैं, वो अक्सर कैंडिडा फंगस से होता है। वो सफेद दिखने में होता है पर वो उभरा हुआ रहता है, उसमें कुछ और लक्षण भी होते हैं, खुजली, जलन, ये सब रहता है उसके बीच में। तो इसका तो फंगस को मारने वाली बीमारियों से, दवाइयों से इससे ठीक होता है। खुला जूता, हवा लगने देना, सूखा और साफ रखना, इन सबसे ठीक रहता है। तो वो विटिलाइगो से रिलेटेड नहीं है, उसका इलाज आपको चमड़ी के डॉक्टर को दिखा के लेना चाहिए। पर
0: ये दूसरी तरह का एक स्किन इन्फेक्शन है। जी, उमेश कुमार लिख रहे हैं खयाला से कि नमस्ते जी, चेहरे पर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं और फिर दोबारा हो जाते हैं, और आंखों के नीचे काली झाइयां सी हो जाती हैं, ये किस कारण से होता है? वैसे तो ये विटिलाइगो से रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा है, पर आप इन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे तो?
1: इनका उम्र अगर हमें पता हो तो शायद और बता पाए, बट चमड़ी के रोगों में देखे बिना बताना काफी मुश्किल है। तो ये दाने अगर लाल हैं, ये एक्ने भी हो सकता है, पिंपल भी हो सकते हैं, आपकी झाई जैसा बता रहे हैं तो वो मेलास्मा या झाई वाली दिक्कत हो सकती है, पर ये आपको दिखा के ही सलाह रहना ठीक रहेगा।
0: जी, सुरेश पाल हमें लिख रहे हैं दिल्ली सुल्तानपुरी से। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश पाल है और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ। सुल्तानपुरी से हमारे एक दोस्त हैं जो जैसे धूप में अगर चलते हैं तो उनको कभी कभी सफेद सफेद से थोड़े थोड़े से दाने होने लगते हैं, तो ये क्यों होते हैं और ये बताएं कि कोई समस्या तो नहीं बढ़ जाएगी?
1: अगर ये धूप में चलने से, यदि ये हाथ के ऊपर होते हैं, चेहरे पे होते हैं, गले के पीछे होते हैं, तो ये एक लाइट रिएक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन कहते हैं जिसे, जो कि धूप की हाइपर सेंसिटिविटी मान लीजिए उससे होता है। ये एक एलर्जी, एक्जिमा टाइप का चीज होता है। कभी कभी ये हल्का सफेद दिख सकता है, पर बिना देखे कहना मुश्किल है कि क्या ये वही है। पर ये विटिलाइगो से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको लगता है धूप से है तो धूप से बचाव करके देख सकते हैं, वरना बेस्ट यही रहेगा कि आप चमड़ी के डॉक्टर को दिखा के उसकी सलाह ले लें।
0: तो धूप से जो आप कह रहे हैं कि बचाव करना चाहिए उनको, सन सेंसिटिविटी या कुछ इस तरह की चीज है, तो कैसे बचाव करें? क्या
1: वो ऐसा बता रहे हैं कि इसलिए बोल रहे हैं,
0: तो सनस्क्रीन लगाएं, बट
1: सन से बचाव के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप फिजिकली प्रोटेक्ट करें, कि पूरी बाजू के कपड़ा पहनना, छाता लेना, टोपी पहनना, ये बेस्ट है, और उसके ऊपर से सनस्क्रीन भी लगाएं अगर। पर सनस्क्रीन अक्सर हम लोग उतना लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको हर 2-3 घंटे में लगाना जरूरी होता है। कोई भी SPF 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन ठीक रहती है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि हमारी स्किन में ऑलरेडी डार्क रंग होता है और उसको कम से कम आधी चम्मच से ज्यादा लगाना होता है एक बार में पूरे चेहरे के। तो कोई भी आमतौर पे नॉर्मल काम करता इंसान इतना सनस्क्रीन लगा नहीं पाता। अच्छा। तो आप छाया में चले, छाता लेके चले, टोपी लेके चले, या किसी कोई गहरे रंग के कपड़े को अपने चेहरे पे बांध ले, जैसे अक्सर आप देखते होंगे स्कूटर वगैरह पे लोग जाते हैं, वो ये करते हैं, तो वही बेस्ट है धूप से बचाव के लिए।
0: ठीक है, राजेश भल्ला हमें लिख रहे हैं कि ये एडवोकेट हैं कंकरखेड़ा मेरठ में, लिख रहे हैं शुभ दोपहर शालिनी मैडम जी, डॉक्टर साहब जी, अच्छी जानकारी मिली आज। कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति लेमन टी सेल करता है, उसको ये बीमारी है जो आप बात कर रहे हैं आज, किंतु कोई दवाई नहीं लेता है। उसका मानना है कि ये बीमारी जीवन भर रहेगी, क्या ये सही है?
1: एक तरह से मैं कहूंगी कि ये जो आदमी है ये काफी अच्छी तरह एडजस्ट हो रखे हैं इस बीमारी से, वो अपना काम कर रहे हैं और उनको परवा, ज्यादा टेंशन नहीं है, जिस बीमारी की टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। तो अगर वो दवाई नहीं ले या ले, ये सच है कि विटिलाइगो आमतौर पे बहुत मुश्किल है कि 100% चले जाए। मोस्ट लोगों में जिसमें अगर

0: इलाज के साथ कम भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो मतलब तीन में से एक को वापस भी आने का लक्षण रहता है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि हम जितना वो उसमें मेहनत करके जितना वो रंग लाएंगे उसमें, तो उतना वो शायद करना नहीं चाहते, और अगर वो इससे एडजस्ट हो गए हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी और कुछ नुकसान नहीं करेगी। और अभी ये नहीं पता मुझे कि उनको कितना है, मान लिए थोड़ी जगह पे है, कोई ऐसी जगह है जहां पे उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट ले तो उनको ना आए, पर अगर बहुत फैल गई है और अगर इंसान एडजस्ट हो जाता है कि ठीक है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है।
1: जी जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
2: डॉक्टर साहब, मेरी एज 42 इयर्स है और मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ।
0: जी।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, जो है ना मेरे ये हाथों के ऊपर सफेद दाग क्या है कुछ दो तीन उंगलियों के ऊपर।
0: जी।
2: फिर मैं जो पैसे जगह है उसमें कुछ सफेद बाल है, फोटो में भी अच्छे हैं, जाकर फोटो उतरवाओ तो पहले भी होगी थी, एक बार दिक्कत मैंने करनाल से जो सिविल हॉस्पिटल में से दवाई खाई थी वो ठीक होगी थी
0: जी
2: कई साल पहले, पर लेकिन फिर हो गया दोबारा। जी
0: जी, तो आप कह रहे हैं आपके हाथ पे सफेद दाग हैं और सफेद बाल भी हैं।
2: हाँ जी, हाँ सिर में सफेद बाल भी हैं जी, और तिल भी हैं, और ये छोटी छोटी फुंसियां भी हो रही चेहरे के ऊपर जी, अभी ये क्या चीज है
0: जी? चेहरे की फुंसियां देखे बिना बताना मुश्किल है, पर ये तो इस बीमारी में अक्सर होता है कि इलाज लेने के बाद ठीक होता है पर कभी ना कभी वापस आ सकता है। इस टाइम पे आपको यही करना पड़ेगा कि जहां से आपको फायदा हुआ था आप वहीं जाके फिर से बताएंगे, हो सकता है वो वही इलाज फिर से दे और फिर से ठीक हो जाए। पर हाथ के, अगर हाथ के आपके हथेली में है और सफेद बाल भी हैं, तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसमें इलाज का रिजल्ट थोड़ा कम आता है, तो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, और अगर आपका एक बार ठीक हुआ है तो मैं कहूंगी आप जरूर वापस जाके उनको बताइए, हो सकता है आपको फिर से फायदा हो।
1: बोधराज खोरवाल जी हमें लिख रहे हैं उत्तम नगर से, क्या सफेद दाग एक बार शरीर में आ जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जिज्ञासा है जानने की। वैसे ना आपने बताया काफी, लेकिन इनका था मैसेज तो मैंने कहा आप एक बार पुनः बताना चाहें तो।
0: जी, हो सकता है का जवाब तो हमेशा हाँ होता है, पर आमतौर पर ये बहुत कॉमनली नहीं होता, पर मतलब काफी कम हो जाता है। आप मान लीजिए कि आपको 100% बीमारी है तो शायद इलाज से आप इसको 30-40% तक ला पाएंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% रंग आ जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वापस कभी ना आए। पर आपकी जैसे स्थिति है, कई मरीजों को ये होता है कि हमारे जो दिखने वाले निशान है चेहरे पे, हाथ पे, इन सब पे आराम पड़ जाए तो वो खुश रहते हैं उसके बाद। तो इसको एक हर इंसान के हिसाब से अलग इलाज होता है और इलाज से फायदा होता है ये कह सकती हूँ मैं, पर ये कहना मुश्किल है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा एक तीर बाण नहीं है।
1: ठीक है। सपना वडेरा जी हमें लिख रही है मेरठ से कि 2 महीने पहले मेरे नोज के साइड में एक थोड़ी सी स्किन रेड हो गई जो ठीक नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? काफी परेशान हो रही है मुझे इनके लिखने के ढंग से, तो प्लीज हेल्प कर दीजिए
0: जी। नोज के साइड में ऐसा सुनने से ऐसा लग रहा है कि जैसे जहाँ एकदम जहाँ पे नोज हमारी चीक के पास होती है वहां पर अक्सर लाल हो जाता है, उसे अक्सर से बोरिक डर्मेटाइटिस ऐसा कहते हैं, पर इसको चमड़ी के विषय में हमेशा देख के ही इलाज लेना चाहिए। तो आप, मैं फिर भी आपको कहूंगी कि आप चमड़ी के डॉक्टर के पास जाके ही इलाज लीजिए, विटलाइगो से तो ये रिलेटेड नहीं है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, कुछ बहुत गंभीर नहीं साउंड कर रहा है, पर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं
1: जी। तो ऐसा घर में ये कुछ ऐसा इलाज नहीं कर सकती है इसका?
0: जी नहीं, ऐसे घर में अक्सर जैसे आप सफेद दाग का भी कई लोग पहले पुराने जमाने में इलाज करते थे, और ये एक तरह का इम्यूनोथेरेपी भी मानते थे कि प्याज का रस, नींबू का रस, ये सब लगाया जाता था, और इसके ऐसे रिफाइंड वर्जन भी आ गए हैं इलाज में जो आज भी यूज होते हैं, कि उसमें वहां पे हम इरिटेशन ऐसे कर देते हैं कि रंग आना शुरू हो जाए। पर फर्क ये है कि जब घर में हम करते हैं तो हमें नहीं पता कितनी मात्रा, कितना वो, ये सब चीज स्टैंडर्ड नहीं है, तो अक्सर वो यूज करने के बाद काला पड़ जाएगा स्किन खराब हो जाएगा। तो यही मैं कहूंगी कि घर के नुक्स इसमें खुद से ना लगाएं तो बेहतर रहेगा, चेहरा है स्पेशली।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये एक मैसेज लिखकर भेजा है हमारे श्रोता ने, नाम नहीं लिखा है, मैं पढ़ पा रही हूँ थोड़ा सा उनका नाम कहीं पे मुझे मैसेज के ऊपर दिख रहा है, एम इब्राहिम, पर उन्होंने अपना नाम नीचे नहीं लिखा है। ये लिखा है कि क्या जो व्हाइट स्किन होती है फॉरेनर्स की
0: जी,
1: क्या उनको भी ये प्रॉब्लम होती है?
0: इंटरेस्टिंग चीज पूछी है आपने, क्योंकि सच ये है कि उनको भी होती है, पर फर्क ये है कि उनकी स्किन में दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी लाइट होती है कि उनकी स्किन में अगर व्हाइट पैच हो तो पता नहीं चलता। तो हमारी स्किन क्योंकि डार्कर होती है तो हमारी स्किन में बहुत

0: आराम से दिखता है, इसलिए ये दिक्कत बना है. तो हमारी स्किन में जब डार्क पैच होता है तो उससे लोगों को कम दिक्कत होती है, पर सफेद पैच ज्यादा दिखता है, पर उनको भी ये बीमारी होती है.
1: जी, तो बहुत सारी स्किन की जो बीमारी होती है, जो अक्सर सुना जाता है डॉक्टर साहब, कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्रीम भी जो होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या जो भी इनको बोला जाता है, तो स्टेरॉइड्स के बारे में एक लोगों को आम धारणा है कि ये नुकसान करता है, ज्यादा समय तक अगर आप यूज करें तो इसका नुकसान भी हो सकता है. कहाँ तक सही है ये बात?
0: ये सही है, और कई लोगों को ऐसा नहीं भी है. ऐसा कई घरों में हमारे पास कई मरीज आते हैं जो बचपन से ये कुछ स्टेरॉयड क्रीम्स जो काउंट ऐसे ही मिल जाती हैं दुकानों पे, पूरे पूरे चेहरे पे लगाते रहते हैं कई साल तक, कि उससे स्किन का कलर, क्योंकि उससे लाइट हो जाता है तो उनको लगता है ये गोरा होने का माध्यम है. पर इससे बहुत दिक्कतें आती है, स्किन पतली हो जाती है, खराब हो जाती है, नसें दिखने लग जाती है, धूप में जाने से लाल हो जाती है. तो स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट बहुत है, तो इसको खुद से नहीं लगाना चाहिए, पर ये कई सारी स्किन की बीमारियों में काम आती है. अगर आप इसको बीमारी के ऊपर यूज करें और सही टाइम तक यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे फिर फायदा रहेगा. पर यही बताने के लिए आपको एक स्किन का डॉक्टर चाहिए. तो स्टेरॉयड का क्रीम कभी खुद ना यूज करें. पर एक चीज मैं बोलूंगी, जैसे वो जो बोल रहे थे नाक के पास जिनको लाल हो रहा था, कि ऐसी कई सारी बीमारियों में आप कोई सिंपल मॉइस्चराइजर जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सेफ होता है और कई बार कई सारी स्किन की बीमारियां उसको लगाते लगाते भी ठीक हो जाती हैं, जो सूखापन, एक्जिमा, सोराइसिस, इन सब में फायदा होता है मॉइस्चराइजर से. तो आप कोई भी चिकनाई लगा सकते हैं, नारियल तेल, मॉइस्चराइजर, ये हमेशा आप खुद से यूज कर सकते हैं और ये अच्छा है यूज करना, पर स्टेरॉयड क्रीम खुद से ना यूज करें.
1: बहुत अच्छी बात ही आपने बताई कि मॉइस्चराइजर हम यूज कर सकते हैं बट स्टेरॉइड्स नहीं यूज करना चाहिए. केदी त्रिपाठी हमें लिख रहे हैं रांची से, उम्र है इनकी 74 ईयर्स. ये कह रहे हैं कि क्या विटामिन सी खाने से फायदा होगा अगर किसी को विटिलाइगो है. इसी तरह से एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या कोई विटामिन की कमी के कारण भी विटिलाइगो हो सकता है?
0: जी, विटामिन की कमी से विटिलाइगो डायरेक्टली ऐसे तो नहीं होता. इसमें जो बहुत सारे स्टडीज, हाइपोथेसिस, कभी किसी स्टडी में होता है कि विटामिन डी की कमी से, पर कभी कोई भी ऐसे कंक्रीट ऐसे प्रॉपर एविडेंस नहीं है. और ये बहुत सारी चीजों से मिलके होता है. जहां तक कि फायदे की बात है, तो विटामिन्स जो एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, विटामिन सी, ई, और यहां तक कि हल्दी भी, इन सब का थोड़ा थोड़ा कहा जाता है कि कुछ फायदा हो सकता है इसका विटिलाइगो में. पर इसका ये इलाज के तौर पे नहीं मानेंगे. मतलब अगर आप विटामिन सी खा रहे हैं, ये कोई नुकसानदायक भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, बट इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. और इलाज तो प्रॉपरली करना ही बेहतर रहेगा. पर ऐसी हल्की हल्की स्टडीज हो रही हैं, पर इसमें कोई कंक्रीट अभी तक साइंस में कोई एक ठोस जवाब नहीं है कि इससे फायदा होता है कि नहीं होता और कितना होता है.
1: जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर आए हैं, बहुत समय कम है पर हम इनका समस्या सुन लेते हैं. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ जी
2: मैम, मेरी एज 17+ है और मेरे को विटिलिगो है. मेरे हाथ और पैरों पे स्मॉल पैचेस है व्हाइट, और मैं अर्ली स्टेज पे है बहुत. तो क्या मैं इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ बढ़ने से?
1: जी डॉक्टर साहब.
0: जी हाँ, मेरे ख्याल से जब अर्ली स्टेज है और तो आपका एरिया कम है, तो बेस्ट रहेगा कि आप घर के नुक्स ना करके आप जल्दी से जल्दी स्किन के डॉक्टर को दिखाएं. अगर आपके निशान बढ़ रहे हैं तो वो आपको एक दवाई ऐसी दे पाएंगे जिससे आपके बढ़ना रुक जाए. और एक बार ये सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए अर्ली स्टेज पे कि आपके निशान आगे ना बढ़े, और उसके बाद फिर रंग लाने की तरकीबें की जा सकती हैं. पर आप दिखा ले जल्दी से जल्दी, ये आपकी तरफ से एक अच्छा स्टेप रहेगा जिससे कि आपका ये बीमारी नहीं फैले.
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, हमें कॉल करने के लिए, हमें मैसेज करने के लिए. समय अब समाप्ति की ओर है कार्यक्रम का. आज हमने डॉक्टर अनन्या शर्मा से बात की जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में, और बहुत अहम बातचीत, हमें बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली. विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर आज हमने बात की. तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर अनन्या शर्मा को कि आप स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें इस विषय पर दी. तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा कल इसी कार्यक्रम में रेडियो डॉक्टर में. स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार. धन्यवाद डॉक्टर साहब.
0: नमस्ते. थैंक यू.
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण वाजपेयी VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज, और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
0: ओके, मतलब पूरा वो।
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में।
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफ़ी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहाँ से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
1: वापस घूम फिर के
0: वापस घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो

0: डेंसिटी वेरियस कहा जाए बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो कैसा था?
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है। अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे, तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते। अच्छा। रहे जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडी डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से। अच्छा। विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में, तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर।
0: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी, देयर आर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफ़ी टाइम रहने के बाद जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो आपकी आँखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत हम किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ वेकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज वो चीज़ एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें WhatsApp मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पर आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने ही सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पर हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीव स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं, और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी

0: के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी, ऐसे बच्चों को स्कूल में लाके उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे,
1: पूरा लाइफ स्टाइल
0: जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं, फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर, मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई शुड वाइंड अप ओनली जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वाज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग, और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसिस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वाज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं, कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे जाके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहाँ की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज, 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस,
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आँख कान नाक सब कुछ होते हैं, तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना, कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहाँ लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज़ बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में ये स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, ठीक है हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीज़ें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे।
0: जी जी,
1: तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे, जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया
0: जी,
1: तो वो जो मोमेंट था?
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा
1: जी।
0: हाँ, बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट के तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक

0: एक अलग सी चीज है,
1: जी
0: बड़ा
1: जी
0: इंटरेस्टिंग रहा हो, तो वो बताइए हमें।
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है। तो
0: जी
1: अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
0: बिल्कुल
1: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
0: बिल्कुल
1: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
0: बिल्कुल
1: जी
0: सर, एक चीज़ यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है,
1: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पाँचवें में
0: ओके
1: हैं,
0: जी,
1: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
0: ओके
1: और इस एग्ज़ाम को जब कंडक्ट कराया जाता है, उसमें अपनी अपनी चॉइस भर दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
0: अच्छा
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
0: जी
1: में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
0: ओके
1: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
0: जी
1: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है। पर
0: जी
1: ये बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
0: जी
1: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की
0: डिसिप्लिन
1: भावना डाली जाती है, ये
0: बिल्कुल
1: जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर
0: बिल्कुल
1: वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग
0: या
1: महत्वाकांक्षाएं हो
0: जी
1: सकती हैं,
0: करियर को
1: चॉइस
0: लेकर
1: हो
0: के
1: सकती हैं,
0: जी
1: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
0: यानी
1: जाता
0: कि
1: है।
0: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
1: जी
0: मजबूत हो जाते
1: बिल्कुल
0: हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
1: बिल्कुल
0: ऑर्गेनाइज हो जाता
1: यस
0: है।
1: यस
0: तो सर
1: यस
0: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशन्स की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
0: ठीक है
1: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के लिए अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है,
0: ठीक
1: जिसपे
0: है
1: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज़ द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहाँ पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा
1: जी
0: प्रोसीजर सामने
1: जी
0: आ जाएगा
1: जी
0: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो या
1: या जो
0: जो
1: पास आउट हो चुके
0: हो
1: हैं,
0: चुके हैं
1: हाँ
0: वो
1: 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल की
1: तो दस
0: लिमिट
1: से
0: है।
1: 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी, और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहें हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ। अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहाँ पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन, और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।

0: तो
1: सर
0: आई
1: ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के उस चीज को
0: एब्सोल्युटली
1: संभालना।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम ए इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो
1: जी
0: उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी मेडिसिन
1: जी
0: साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में
1: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो।
0: जी। बट हाँ, 3 साल 4 साल हो गए वहाँ पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रमेंडस, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत चीज़ों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी वहाँ पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है,
1: ओके
0: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
1: ओके
0: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
1: अच्छा
0: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी।

0: सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। अब ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
1: जी,
0: करी
1: जी।
0: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहाँ पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
1: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
0: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। जो लखनऊ वाला पीजीआई, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि प्लस पीएचडीज भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहाँ पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहाँ
1: अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझें या आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो बता रहे हैं आप
0: संस्थान में? जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
1: अच्छा।
0: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके,
0: हाँ। तो प्लस यहाँ पे ये है कि भाई जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
1: सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताए उनको और बेहतर।
0: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर and I had all the people who under me and I could use them at my own disposal. यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग competencies, capabilities और अलग अलग environment से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक तरीके से जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी, तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थमते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
0: फिर आगे बढ़ते हैं।
1: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के

0: लाभ हम लोग लेके आए। हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड PGI वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट जी जी, और जाहिर है वो बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज़्यादा यूज़ किया जाए, कैसे उनको लेके चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज़ बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है
1: वो एक लाइफ
0: स्टाइल
1: और बहुत ही स्पेशल है,
0: मैं समझता हूँ।
1: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो
0: जी।
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये ज़रूर है कि NCC हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुँच पाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक इंथुजियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएँ, नेवी में जा पाएँ, एयरफोर्स में जा पाएँ। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो दशवार है, एग्जैक्टली।
1: सर एक चीज यहाँ भी बताइएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहाँ आपने बताया कि NCC से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन NCC बटालियन ऑल्सो। तो NCC में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा,
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना NCC का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा,
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक NCC का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स।

0: प्रोसेस में, इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी. तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपियर करने की छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपियर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी. एसएसबी आपने पास कर लिया तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए. बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं.
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज़, वो
0: राष्ट्रीय भावना और वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट.
1: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोश जज्बा और देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हाँ भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है और उस पर जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है. तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
0: जी जी बिल्कुल.
1: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें.
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं.
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM. आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो का संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक. आप भी इंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से. 9868107070 नंबर है हमारा.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज़ हर जगह है, हर चीज़ में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज़ हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज़ कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सब के जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप किसी चीज़ को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज़ बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए सर, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पे

0: एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में,
1: अच्छा
0: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में, एआई विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने एमआरआई करा, एमआरआई को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा, दे विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 एआई के जो एआई का जो डेटा बेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
1: जी,
0: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो पीजीआई में बहुत बड़े स्तर पे अभी एआई को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, उस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है। आई एम श्योर आने वाले टाइम पे एआई से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
1: जी। एआई विल, अक्सर लोग बताते हैं कि सर अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज़ को, लेकिन ये बताया गया है कि एआई बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
0: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि एआई का जो असेसमेंट रहा है
1: जी,
0: वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफ़ी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि दे विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि एआई के माध्यम से, एआई के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
1: सर, एआई पर हमने बात की, और एआई तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में। हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
0: जी,
1: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
0: जी जी जी,
1: तो एक बार और प्लीज अगर बता
0: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
1: जी।
0: क्लास फिफ्थ पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
1: जी।
0: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास छठे और क्लास नवे में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम एनटीए कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशन्स की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस,
1: अच्छा।
0: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
1: ओके
0: जी,
1: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद। जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। I give respect from bottom of my heart, myself, Shankar Lod, from Gomo district, Dhanbad, Jharkhand. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai.
0: Bharat Mata Ki Jai.
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी, जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे, यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफ़ी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा
0: जी। जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है, जिसके पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से
1: जी।
0: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।

0: तो यही क्लास ट्वेल्थ पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही, इनका इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से उनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
1: जी।
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे, या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है बस खाली।
1: वाला था सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे?
0: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज़ में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज शॉर्ट तो है ही। जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
1: सर एक चीज़ ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है, वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता
0: जी।
1: तो इससे बचने का कोई तरीका है? जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, किताबें भी ज़रूरी हैं।
1: किताबें
0: देखिए साहब, आप
1: बिल्कुल
0: एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है। तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है,
1: ये बहुत जरूरी है। और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं।
1: अच्छा।
0: किस तरीके से दूर रहना है, देखिए फौज में बहुत सारी चीज़ें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि
1: अच्छा।
0: भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट,
0: यस अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इस चीज़ों से। प्लस आपको पता ही कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी ईविल आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत ज़रूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है।
1: तो क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
0: देखिए कुछ चीज़ें तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों
1: जी। तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमें लिसनर सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: तो सो मच,
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए
0: जी।
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: मीडियम पाथ बनाओ जिथे दो चीजा कठिया चल सकन। सो मेनू याद है बहुत मुश्किल आई है जलंधर वर्गे शहर च डांस नो एक्सेप्टेंस देना बहुत औखा,
1: बहुत औखा है, वो भी जदों एक मुंडा उनु कर रहा होवे।
0: बिल्कुल, एंड बढ़िया टिचकरा टोंटा, बहुत मुश्किल आई है मेनू। मेनू अज तक याद है, अज तो अबाउट अप्रोक्सीमेटली 21 साल पहले जो मैं प्रोफेशनली शुरू किया स्कूल की गल तो छड ही दो, तो मेनू याद है उस वेले पापा ते दोस्त या कोई साडे सगे संबंधी आंदे सीगे, ऐ कहंदे सी किहड़े कम्मां च काम खोलते अपने मुंडे नू, ऐ कोई प्रोफेशन है किन्ना कमा लेगा। तो मैंने याद आज तो 21 साल पहले आई यूज्ड टू टेक अबाउट 500 रुपीस पर क्लास, 500 रुपए क्लास का लेंदा सीगा, ते 10 स्टूडेंट आ गए, 5000 रुपए ना की करेगा। सो मैंने लग्या मेरे पापा ने एक चीज कहनी है हमेशा, बेटा जो कहंदा है उन्हें कह दे तू अपना कर जो करना चाहता है। बिलीव मी अजिहे दिन सीगे, मॉडल टाउन च मेरी पहली अकेडमी सीगी, सो ओदा शुरुआती रेंट सीगा आज तो 21 साल पहले 10,000 रुपए।
1: अच्छा,
0: ते ओ 10,000 कढ़ने भी मेरे वास्ते बड़े औखे होंदे सी, बट सब दा साथ रहा, एंड आई वुड से ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਪੈਨ ਆਫ 4 to 5 years we made it a record of teaching 2.5 lakh bachche nu si dance sikhaya
1: siga. Oh my god,
0: wow. And that was so amazing. I still remember Jalandhar, Punjab, Delhi, matlab Punjab chadi vi jinne bhi dance studios ne 90% of them I think mere apne shishya hi utthe dance sikha rahe hain. Ajj unna di academies enni achhiyan chal rahi ne, ajj oh aap hi agar tusi keh rahe sige na towards profession, ajj oh bachche apne vallo hi lakho kama rahe ne. So mera ek choti ji request hai saryan nu, kala nu बनना दो, बेशक वो डांस है, बेशक वो गाना है, बेशक वो एक्टिंग है, बेशक वो थिएटर है, अगर तुहाडे अंदर पैशन है, तुहाडे अंदर अपने आप क्रिएटिविटी है, ते चीजां रस्ते अपने आप निकलेंगे, बट ओदी मेहनत, लगन, रियाज एक बहुत वड्डी चीज है।
1: बिल्कुल, और गगन जिदा तुसी कहा कि रियाज बहुत जरूरी है, मंजिल अपने आप थानू मिल जाती है, और असी अगर पंजाबी सभ्याचार की गल करिए तो असी अपने किसी भी त्यौहार किसी भी खास मौके नू डांस तो बिना तो तसव्वुर कर ही नहीं सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा कि दीवाना होना पैंदा है, मस्ताना होना पैंदा है, इत्थे बुल्ले वर्गे मुरशद नू भी नचना ते गाना पैंदा
0: है ना। क्या बात है, क्या बात
1: है। गगन तुसी साडे कोल आए हो युवाणी प्रोग्राम दे विच, हर रोज ये प्रोग्राम शाम 5 to 6 बजे तक पेश किया जाता है, और युवा दोस्तों नू ना सिर्फ असी थोड़े वर्गियां एस्टैबलिश पर्सनैलिटीज नाल असी गलबात करवाने हैं, समा के असी चाहते हैं कि तुहाडे वर्गे लोगों तो वध तो वध साडे बच्चे सीख सकन। तो युवा दोस्तों के मन च एक सवाल आ रहा होगा कि उन्होंने मौका मिलता है स्कूल दे विच, कॉलेज दे विच। मैं देखे कई बच्चे कहते हैं झिझक दे मारे कि नहीं असी नहीं जाना स्टेज दे उत्ते नहीं जाना। तुसी ये दसो कि इस लैवल दे उत्ते स्कूल कॉलेज दे विच जदों असी यूथ फेस्टिवल या 15 अगस्त 26 जनवरी दे उत्ते स्टेज दे उत्ते डांस पेश करते हैं, कि इहदे नाल भी थोड़ा आत्मविश्वास वधदा है, कि इहदे नाल भी थोड़ी डिसिप्लिनड लाइफ वल कदम वधने शुरू होंदे है।
0: मैम वधदा इहदे नाल है, अगर स्कूल कॉलेज साडी बेसिक फाउंडेशन होंदी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज अगर थोड़ा वधिया निकले, ईवन साडी एजुकेशन भी, क्यों कहिंदे आ बच्चे यू नो माँ प्यो क्यों कहिंदे आ अच्छी तरह तो पढ़ो, क्योंकि तुसी अगे जाके वड्डे अफसर बन सको या तुसी अच्छा अपना बिजनेस चला सको। ऐसे प्रकार बहुत अजिहे पेरेंट्स ने, मेरे तो अजिहे पेरेंट्स ही सीगे, उन्होंने हमेशा यही मैंने कहा कि गगन अच्छी तरह तो अपने डांस की कला उत्ते ध्यान दे, अच्छी तरह तो ये उत्ते रियाज कर, अपनी पढ़ाई भी नालों नाल कर। That's what I was all around in my studies also.
1: Okay.
0: And trust me, मैं सारे बच्चों नू, सारे नौजवान पीढ़ी नू एक यही मैसेज देना चाहवांगा, स्कूल कॉलेज की जिहड़ी स्टेज है वो एक तरह तो रब की दित्ती स्टेज है। उन्हां सालां च जिहड़ा तुसी मेहनत कर लैंदे हो, वो मेहनत सारी उम्र तुहाडे मरते दम तक काम आनी है। अगर अज असीं गल करिए ना, जिवें लैजेंड सीगे पंडित बिरजू महाराज जी, if you talk about Saroj Khan ji, if you talk about Shah Magdawar ji, if you talk about Farah Khan ji, jide you know diggaj choreographers ne, unna ne agar aaj apne aap mein kuch banaya hai to remember oh bachpan to hi lagge hoye si apne task utte. Bade ajehe vi yuva ne jide sochde ne ki aaj assi sirf ek Instagram di reel bana ke hit ho jawange, I'm sorry, then you're a अगर रियल डांसर बनना है, रील उत्ते करो कॉन्सेंट्रेट। मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे कहती कितना रीला पाना मैं नहीं कहता, बट पहले रियल डांसर बनो। अगर रियल बनना है ओदे वास्ते प्लीज किसी गुरु का साथ लो, किसी राइट जगह तो एजुकेशन लो, तुहाडे स्कूल च भी डांस टीचर्स होंगे, तुहाडे कॉलेजेस च भी होंगे तुहाडे लेक्चरर्स, नालों नाल तुहाडे अजकल तो इन्ने डांस स्कूल्स आ गए ने, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। गो आउट, साढ़े टाइम सके, अज तो मैं पिछे जो चले जावा ਡਾਂਸ ਸਕੂਲਸ ਕੀ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ APJ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਬੋਇਜ਼ ਸਕੂਲ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਰਗੈਟ ਸੰਗੀਤਾ ਚੋਪੜਾ।

ज़्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल इस गल च कोई शक नहीं कि साडा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा जे साडे कोल गैजेट्स होणगे। पर जे तुसीं सोचो कि ये वायरलैस जिहड़ी ट्रांसमिशनस है ये सानू बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाउण वालियां, तां इह फिर तुसीं गलत सोच रहे हो, क्योंकि रेडियो वेव्स ते जिहड़ियां होर भी वेव्स यूज हुंदियां इन्हां टैक्नोलॉजीज दे विच, इह साडी ब्रेन हैल्थ ते हार्ट हैल्थ लई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ते इस लई उन्ना की यूज़ करना है असीं इन्हां चीज़ां नूं जिन्ना कि साडे लई हैल्दी रहे। बहुत ज़्यादा इन्हां उत्ते असीं डिपेंड नहीं करना। ते एक प्यारा जिहा गीत सुनना है हुण।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

दिल तो पागल है हीरो नंबर वन बीवी नंबर वन फिजा ते होर कई फिल्मां राही उन्होंने ये साबित किया कि एक अदाकारा सिर्फ खूबसूरती नाल ही नहीं सगो अपनी कला नाल भी लोगों के दिल जीत सकती है। उन्होंने हर मुस्कान विच एक सादगी सी अते हर किरदार विच एक वक्री चमक। अज दे इस खास सफर विच असीं करांगे करिश्मा कपूर दे जीवन उन्होंने संघर्ष उन्होंने सुपरहिट फिल्मां यादगार गीतां उन्होंने जुड़िया दिलचस्प गल्लां दी चर्चा असीं जाणांगे कि कैसे एक नौजवान कुड़ी ने बॉलीवुड विच अपना राह बनाया अते लखां प्रशंसकां दे दिलां दी धड़कन बन गई। तो दोस्तों अपने दिलों के दरवाजे खोल लो यादां दी पोटली तैयार रखो तो चलो निकलते हैं एक सुहानी फिल्मी सफर से। मैं हाँ तुहाडा मेजबान आरजे जोरावर सिंह अते तुसीं सुन रहे हो फिल्मी दुनिया जिथे हर सितारे की एक कहानी है अते हर कहानी के पिछे लुकिया हुंदा है एक सुपना। चलो शुरू करते हैं अज का एक खास अध्याय बॉलीवुड की चहेती अदाकारा करिश्मा कपूर दे नाल।

नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइन विच तुहाडा स्वागत है। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा प्रणालियां ते मजबूत ब्रिक्स सहयोग का सदा दिता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि COVID-19 दहशतगर्दी ते अत दीआं जलवायु घटनावां दे प्रभाव वर्गीआं चुनौतीआं दा सामना करन लई अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिन 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री हुरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135

0: क्या बात है, देखिए मैं कह रहा मैं है गई सरदार हो ना, मैं शौक लियो बना ना मैं दिखावे आली बनाते हो, मैं तो हाँ गई सरदार
1: ले लो हो गया काम वही। चाचा जी टेके बह जाओ फिर डिगी जाने हो तो ही बार बार। हाय रब्बा औखा ही है चाचा जी का। चाचा जी उठ के बैठो।
0: शुक्र ओ की करिए यार, ऑल इंडिया रेडियो ते आके ना एफएम रेनबो जो जो असी ए जेड़ा शो करदे आ, ए ता तेरा धन्यवाद भी जोड़ा वर्षियां तू मैनू इथे बुला लेना ते बिठा लेना।
1: असल च चाचा जी असी ना बुजुर्गां दा बड़ा सत्कार करदा।
0: ओए बुजुर्ग किनू किया, बुजुर्ग ओ है तेरा बापू।
1: चाचा जी वैसे इन्ना उची नहीं बोलना चाहिए, तेन कि ब्लड प्रेशर हाई हो के किते कुछ हो रही ना हो जावे।
0: एक तो जोरा बार छेंग तू ना वह जड़ियां छटलियां जी कर दे, छटलियां कनिया बंद कर दे, अगला कॉल कीता है वो चुक तू जेड़ा मेन काम आ ठीक है ना, तो कैसा तेरा मैं वाहे ना दो तीन जुगतां बना के आया। जे इजाजत होवे तो सुना दिया।
1: हाँ जी हाँ जी सुना दो, तुम मेरे मुंह तो बनाई होनी है।
0: चल फिर सुन मेरा वीर, फस गई ना मुर्गी, कैसा तेरा मुंह, देखो तेरे वर्गा मुंह उदो बनता हुंदा जदों किसे बंदे ना तिना महीनों का बिल टिके वाली आ जाए। हसदे ने हुण सारे हसो। बस बस करो यार, वो कैसी गल, बस करो।
1: वेलो चाचा जी ता कहना बनते मैं लगता तो जुगत ही बड़ी खतरनाक बीमारी है कि जो शकल इदा की बनती है ना उदो बनती है, जो तिना महीनों का बिल कट्ठा ही किसी का आ जाए। सो वाकई वह बड़िया फनी फनी गल कर ला पे, चक्कर की आ?
0: चक्कर पता की आ, मैं करना शुरू हो गया थिएटर, तो थिएटर की कह थिएटर।
1: चाचा जी बस करो, चाचा जी तुम मेरा ही हासा खड़ा होता। चाचा जी थिएटर होंगे थिएटर जिन्हों पर ड्रामा कहने आ थिएटर।
0: हाँ हो ये चा चा
1: बस बस बस चाचा जी बस बस करो।
0: बस करो यार, बस करो, शट अप।
1: ओ क्या बात है चाचा जी, पहली नहीं तो कहना मन्ने जे शट अप। चाचा एक करी फिर थिएटर बोल के दिखाया हो।
0: हाय हट चुप कर।
1: चाचा जी बड़े बनी है यार, क्या बात है। वैसे ना साडे जिन्ने भी बुजुर्ग
0: फिर बुजुर्ग कहने
1: उन्हें नहीं, मतलब तुहाडी नहीं गल कर लिया, तुसीं तां नौजवान जे, क्या बात है। मैं वैसे ना तुहाडे ते एक गाना लिखिया, बोला
0: बेटे बोलना नहीं हुंदा सुनाउणा हुंदा।
1: आहो चलो उही हुंदा सुनावां तुहानू, मैंने कुट्टे होणा
0: मतलब कोई गड़बड़ आ गाना।
1: नहीं नहीं चाचा, मतलब हुणे आमद होई है गाना बनाया।
0: इन्नी डौले आ चीजां इट्टां चक्कियां ना जाण, इन्नी डौलियां च जान इट्टां चक्कियां ना जान, जिथों लंघी दा एवें नी लोकी गालां कढ दे।

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 28 जून 2026 नु दिन 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नु प्रसारित करेंगे नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री हुणां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी

वेल दोस्तों, इट्स वेरी फेयर बिकॉज यू आर लिसनिंग आवर शो ओनली ऑन न्यूज ऑन एयर ऐप। जी हाँ, न्यूज ऑन एयर ऐप आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल आज तुम इंजॉय कर रहे हो। प्ले स्टोर के उत्तों डाउनलोड किया हुआ जरा ऐप है और चला के तो शो का नाम है दिल चाहता है। तुहाडे दिल दियां जो फरमाइशां ने असीं पूरियां कर रहे हैं। सो सानू अगली फरमाइश जिहड़ी आई है लिखते ने, दिल चाहता है कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। जी नमस्कार, बिल्कुल जी। फिल्म का नाम लिखते ने अनपढ़, स्वर लता मंगेशकर, गीत के बोल आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें वाजिबा। सादर शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रिवार्ड। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज भेजा और लीजिए आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।

क्या बात है, इट्स वेरी वेयर बिकॉज यू आर लिसनिंग आर शो ओनली ऑन न्यूज ऑन एयर ऐप, जो कि तुसी प्ले स्टोर तो डाउनलोड करके इस ऐप तो साडे शो दा आनंद मान रहे हो। साडा की ताडा की साडा सारे दा ही शो आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल दिल चाहता है शो चल रहा है। सो अगली फरमाइश साडे कोलो जिहड़ी पहुंची है वह पहुंची है पढ़ते हैं अकड़ पकड़ बंबे बो। लो जी लिखते हैं, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड होस्ट हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल जी, जनकपुरी सहारनपुर से, वाह जी वाह, सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। ओके, सॉन्ग लिखते हैं ये कौन चित्रकार है, मूवी बूंद जो बन गए मोती, मुकेश 1967। ओके थैंक्स, अगो फ्लावर पीस देने, बटरफ्लाई पीस देने, थैंक यू वेरी मच। या लिख देने, या आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लेना। अरे वाह क्या बात है। ओके रिस्पेक्टेड होस्ट, थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम विद लवली सॉन्ग्स। ओके थैंक यू वेरी मच, तुसी सानू सुन रहे हो तो लो जी ये कौन चित्रकार है, लीजिए अपना गाना।

दोस्तों ऐ नहीं लग रहा किसी समुद्र के किनारे दे बैठे ने। सो वेलकम बैक, तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जिसका नाम है शामी गजल, जिते तुसी गजलां नू इंजॉय कर रहे हो। सो कहंदे ने कि ख्वाब जिहड़े ख्वाब ने ख्वाब अखां विच सजा के रखिए, वक्त भावें किन्ना भी आजमा के वेख लवे, जो हौसले नाल तुरदे ने मंजलां वल, जो हौसले नाल तुरदे ने मंजलां वल, उन्हां नूं राह आप बना के वेख लवे। ख्वाब ओ ने जो नींद विच आउंदे ने, ख्वाब ओ ने जो सौण नहीं दिंदे। इहदा मतलब इह नहीं कि तुसीं उहनां नूं सौणा नहीं है, जे नींद आई तां तुसीं सो भी सकदे हो। मंजलां उहनां दे कदम चुमदियां ने जो मुश्किलों तो कदे नहीं डरते, मंजलां उन्हां दे कदम चुमदियां ने जो मुश्किलों तो कदे नहीं डरते।

खुशी हो तो सबके साथ बांट लेना, गम हो तो थोड़ा सा खुद भी संभाल लेना। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब अपनों के साथ हर एहसास बांट लेना। दर्द बांट लेने से कम हो जाता है और खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। यही तो खूबसूरती है रिश्तों की, जो जिंदगी को और भी हसीन बना जाती है।

प्यार वो एहसास है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है। ये वो रोशनी है जो हनेरे समय विच भी उम्मीद दी किरण बन जाती है। जदों कोई अपना साडे नाल हुंदा है तां खुशियां दोगुणियां हो जांदियां ने, अते जदों कोई दूर हो जावे तां उस दीआं यादां वी एक मिठे गीत वांग दिल विच वस जांदियां ने। अज दे इस प्रोग्राम खास प्रोग्राम विच असीं करांगे गल्लां प्यार दीआं, रिश्तिआं दीआं, यादां दीआं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।